प्यार का मतलब है काफी चीजें, लेकिन प्यार जो हम समझते हैं वो प्यार है जो एक ही दफा आता है, और जब आता है पकड़ना चाहिए।